0: फरियाद है, फरियाद है। अजी सुनिए साहेबान, मेरी बात तो सुनिए और तुम भी सुन लो। अजी सुनती हो मेरी जान, तुम्हारी जुदाई में खुदा की खुदाई में कल से कुछ खाया न पिया,
1: न पिया।
0: अरे अरे अरे अरे, अब तक न जाने कैसे जिया,
1: कैसे जिया।
0: ऊपर से धूप ने और भी जलाया है, कोई छतरी है न साया है,
1: न साया है।
0: अरे एक छतरी का सवाल है बाबा,